0: ಒಂದೇ ಮಾತರಂ.
1: ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಶಸ್ಯಶಾಂ.

शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुख

टाशी दिलिक, मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 22 तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री संगी बम्पा सिरथीपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हमसिरिंग, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास, मम्पा उद्घोषक श्री कुंचो संगी की तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका यंबिन थामू। आकाशवाणी तवंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं आपसे चंडी पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: चंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वही आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय

0: प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिवू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: टू शिप्स विच आर फॉरन फ्लैग,
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म

0: व्यवस्था विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है, जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले दो छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया, जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14,00,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14,00,000 लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये

0: आकाशवाणी है। और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशु जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए हरिहरन सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और साथियों के आवाजों में चंद हिंदी भजन।

कार्यक्रम वंदना के तहत श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं हरिहरन सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और साथियों के आवाजों में चंद हिंदी भक्ति गीत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हरिहरन सुरेश वाटकर, कविता कृष्णमूर्ति, नितिन मुकेश और साथियों के आवाजों में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए निफालू भू के आवास में चंद दिगारू मिश्मी गीतों का।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत चंद आधुनिक दिगारू मिश्मी गीतों का नफालू भू के आवाज में, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

0: श्रोताओं आप आनंद ले रहे थे निफालू बो की आवाज में चंद आधुनिक दिगारो मिशमी गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात के तहत आज सुनिए पीएम श्री जेएनवी तवांग के 9वीं कक्षा के छात्रा जयसी चंद्रोजु से नशा मुक्त समाज की आवश्यकता विषय पर उनके विचार।
1: हर घर का चिराग ना बुझने पाए, हर घर का चिराग ना बुझने पाए, नशे की आग को हम जो बुझाए। छोड़ो नशे को, त्यागो तुम, होश में आओ, जागो तुम। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी जोय चोंगरोजू, पीएम श्री जेएनवी तवांग 9वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय नशा मुक्त समाज की आवश्यकता पर है। नशा केवल एक व्यक्ति की बुरी आदत नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक बीमारी है जो धीरे धीरे व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को खोखला कर देती है। शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स, ये सभी नशे के रूप हैं जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। नशा सबसे पहले व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। नशे की लत लगने के बाद व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना भूल जाता है। उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और गंभीर बीमारियां उसे घेर लेती हैं। इतना ही नहीं, नशा मानसिक तनाव, अवसाद और आत्महत्या जैसे खतरनाक परिणामों को भी जन्म देता है। यदि हम परिवार की बात करें तो नशे की वजह से परिवारों में कलह, गरीबी और हिंसा बढ़ती है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जिस घर में नशा होता है वहाँ शांति नहीं बल्कि डर और अशांति का माहौल होता है। समाज का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है, लेकिन आज का युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। गलत संगति, तनाव, दिखावा और सोशल प्रेशर के कारण युवा नशे को फैशन समझने लगे हैं। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यदि युवा ही कमजोर हो जाएंगे तो देश का भविष्य कैसा सुरक्षित रहेगा? नशा मुक्त समाज केवल सरकार या कानून से नहीं बन सकता, इसके लिए हम सबकी भागीदारी आवश्यक है। सबसे पहले हमें स्वयं नशे से दूर रहना होगा। अपने मित्रों और परिवारजनों को भी इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी अभियान चलाने होंगे। मीडिया और सामाजिक संस्थाओं को भी इसके दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। नशे में फंसे हुए छात्र छात्राएं अपने भविष्य को खतरे में डाल लेते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। नशे को ना कहे, जीवन को हाँ कहे, स्वस्थ समाज का सपना मिलकर सच करें। धन्यवाद।
0: श्रोताओं अभी आपने सुना पीएम श्री जेएनवी तवांग की 9वीं कक्षा की छात्रा जयसी चंद्रोजु से नशे मुक्त समाज की आवश्यकता विषय पर उनके विचार। इसी के साथ ही दैनिक कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ। आपकी सेवा

0: में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो चलिए साथियों, अब आरंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत को। इस कार्यक्रम का पहला नगमा लीजिए पेश है इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से, जिसे स्वर और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने और शब्द स्वानंद किरकिरे ने।

0: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
1: श्रोताओं, चलिए आनंद लेते हैं कार्यक्रम नारी संगीत के दूसरे नगमे का, जो कि हमने चुना है डियर जिंदगी फिल्म से। ये गीत है जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी के आवाजों में, जिसे शब्दों में पिरोया है कौशल मुनीर ने और संगीत से सवारा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं कार्यक्रम गीत माफ कीजिएगा नारी संगीत के अंतिम नगमे का आनंद लीजिए। जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन के आवाज में, गीत के बोल है गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इन्हें नगमों के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत मंजरी को, और लीजिए पहला नगमा कार्यक्रम गीत मंजरी का, प्रस्तुत है सनम रे फिल्म से अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाजों में। गीत को शब्दों में पिरोया है मनोज मुंतशिर ने और संगीत से संवारा है अमाल मलिक ने।

हॉलीडे फिल्म से प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजरी का दूसरा नगमा, जिसे स्वर दिया है अरिजीत सिंह ने, शब्द इरशाद कामिल ने और संगीत प्रीतम ने।

श्रोताओं, अगला नगमा प्रस्तुत है रईस फिल्म से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर के आवाजों में। गीत के बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत कौशिक आकाश और गुड्डू का।

जिले की अपनी एक पहचान है। हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर वेव्स OTT इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।

श्रोतम कार्यक्रम गीत मंचरी का अगला नगमा लीजिए प्रस्तुत है गोलमाल फिल्म से नीरज श्रीधर और सुकृति कक्कर के आवाजों में। इसके गीतकार है कुमार और संगीतकार है अमाल मलिक।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। तो आइए इस फिल्मी नगमों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं टाइगर जिंदा है फिल्म से एक गीत आतिफ असलम के स्वर में। गीत के बोल है इरशाद कामिल के और संगीत विशाल शेखर का।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, अजीज कौर और तनिष्क बख्शी की आवाज में एक गीत का, जिसे रचा है रश्मि विराग ने और संगीत से सवारा है तनिष्क बख्शी ने। लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान के आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीत से सवारा है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम नगमा आप सुन रहे थे विशाल रबजानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन के आवाजों में, जो कि था स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। इस गीत को शब्दों में पिरोया है अन्विता दत्त ने और संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने। और इसी के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्में नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग के तहत आज आनंद लीजिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां से ख्याल का राग है बिमपलासी, तथा उन्हें संगत दे रहे हैं तबले पर शरीफ अहमद खान और सारंगी पर लियाकत अली खान।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होने को है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइड एमलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने लोकभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनाइक रिटायर्ड से मुलाकात की। एनटीएलएलपी के प्रबंध निदेशक नवाम तालोन ने कहा है कि चल रहे सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य के पूरा होने के बाद भोजपुतिन सड़क को आगामी 10 सितंबर के बाद जनता के लिए फिर से खोलने की उम्मीद। तवंग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग आरटीएम की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक समन्वय बैठक की। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कमिंग कृषि विज्ञान केंद्र केवीकी द्वारा पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह के अवसर पर पार्थेनियम के बारे में जागरूकता को और बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। एनजीओ आयकर अकुम द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कार्यक्रम का आयोजन। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंग यू और टेन इनिंग से मुकाबला खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मिलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगे। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में निकट ऐतिहासिक थॉटल कोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत थॉटल कोंडा में पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंसिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता है। इकोनॉमिक टाइम वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार की निर्भर पर रखा जा सके। शासन की सोच पर परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंसिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार सप्तधारा के पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित

0: प्रमुख क्षेत्र शामिल है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने कल लोकभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। इस दौरान जनविश्वास मजबूत करने, जमीन स्तर की संस्थाओं को सशक्त बनाने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और अंतिम छोर तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से चल रहे प्रस्तावित प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने जोर दिया है कि सुधार व्यवहारिक, जन केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार होने चाहिए। उन्होंने अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने, समावेशी विकास तथा यह सुनिश्चित करने पर स्पष्ट ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है कि सुदूर सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को भी उत्तरदायी और जवाबदेह शासन मिल सके। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और शासन की बदलती जरूरतों के अनुरूप बदलाव का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश की पापुमपारे जिला प्रशासन और जिला ICDS सेल यूपिया द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों के सहयोग से दोनों KSTO कॉन्फ्रेंस हॉल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटी जन्मोत्सव का आयोजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए दोनों KSTO नीलाम तान ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेटी जन्मोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बालिकाओं को महत्व देने, उनकी रक्षा करने, साथ ही शिक्षित और सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी है। NTLLP के प्रबंध निदेशक नवान तालम ने कहा है कि चल रहे सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य के पूरा होने के बाद हौज पोतेन सड़क को आगामी 10 दिसंबर के बाद जनता के लिए फिर से खोलने की उम्मीद है। श्री तालम ने कहा है कि सड़क बहाली का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है और समय पर काम पूरा करने के लिए NTLLP की टीम 24 घंटे काम कर रही है। इस महत्वपूर्ण सड़क के दोबारा खुलने से यात्रियों को राहत मिलने और क्षेत्र में सुगम संपर्क बहाल होने की उम्मीद है। तवांग उपायुक्त नांग्या लांगमो की प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। यह आयोजन अगले 28 से 31 अक्टूबर तक तवांग में आयोजित किया जाने का प्रस्ताव है। बैठक में ITM प्रतिनिधियों ने तवांग और आसपास के विभिन्न पर्यटन स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के प्रस्तावित दौरे और संभावित कार्यक्रम पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। ईस्ट कमिंग कृषि विज्ञान केंद्र KVK द्वारा पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह के अवसर पर अपने कैंपस में पार्थेनियम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय किसान परिवारों और ग्रामीण युवाओं को पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसमें आमतौर पर गाजर घास भी कहा जाता है, इसे तेजी से फैलने वाली जहरीली खरपतवार के बारे में जागरूक करना था। ये खरपतवार पूरे जिले में खेती और जमीनों में सड़क के किनारे भी फैल रही है। KVK प्रमुख डॉक्टर MC देवनाथ ने इस खरपतवार से होने वाले गंभीर खतरों के बारे में जानकारी बताई है। ये खरपतवार शक्तिशाली एलोपैथिक केमिकल छोड़ती है, जो इसके लगातार संपर्क में रहने से इंसानों की गंभीर इम्यूनाइटिस और त्वचा की एलर्जी हो सकती है। साथ ही हवा में उड़ने वाले इसके प्रांगण ग्रामीण इलाकों में एस्मा, एलर्जी, राइनाइटिस और ब्रोंकाइटिस जैसी पुरानी सांस की बीमारियों को मुख्य कारण बन सकते हैं। 5 मई 2023 को स्थापित हुई NGO आइक अकुम द्वारा ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित IGJ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ऑडिटोरियम में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके योगदान को सराहकर उन्हें सम्मानित करना था। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कादो पोनुम नामक एक सांस्कृतिक गीत भी पेश की गई। अब BWF विश्व चैंपियनशिप पर सुनिए भूपेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट।
2: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशु जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है।

これ。도하니모마셔너

Más uno.

0: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
1: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी लिए खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या भुजबन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है, और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने

0: आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
1: मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुन मेरम के तहत सुनिए जंग थिम्बू ब्लॉक के बोती शिक्षकों से युंजक सुम्बा, डुकर, संगमा, शेरप निम्बो और नोवा मंगलम। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7 बजे, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के तहत सुनिए खंडरो ड्रोवा जम्मू जिला अस्पताल के ईएनटी जूनियर स्पेशलिस्ट डॉ. रहम दर्जी से ईएनटी संबंधित बीमारियां और उनके उपचार विषय पर हुए एक साक्षात्कार। सुर और धुनों का साप्ताहिक कार्यक्रम सांस और आवाज आज शाम 7:30 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे अलबेला और कल होनी हो फिल्मों से 2 गीतों के साज और आवाज का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर कार्यक्रम कौन है तराने के तहत आनंद लीजिए उपकार फिल्म से महेंद्र कपूर के आवाज में एक देशभक्ति गीत का। आपकी वत्सल फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे, जिसमें हम आनंद लेंगे सागर, दिल तो पागल है और काला पत्थर फिल्मों से चंद सदाबहार नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील आज रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज सेट 9। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने माफ कीजिएगा आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 23 अगस्त 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए लामा गुम्बू डप्पा और लामा लिप्सन ग्रुप से बौद्ध भक्ति गीत। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आनंद लीजिए जिग्नू दर्जी और साथियों से चंद लद्दाखी लोक गीतों का कल दोपहर 3:30 पर। दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए पीएम श्री जेएनवी तावंग के 8वीं कक्षा के छात्रा देवी प्रधान से बुनाई और हस्तशिल्प की कला विषय पर उनके विचार। महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत कल दोपहर 3:33 पर, जिसके तहत आप आनंद ले सकेंगे सिंगम फिल्म से श्रेया घोषाल, राबता फिल्म से आतिफ असलम, गुडबाई फिल्म से अमित त्रिवेदी, रॉय फिल्म से मीत ब्रदर्स अंजान और कनिका कपूर, ओम शांति ओम फिल्म से के तथा आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के आवाजों

0: चंद नगमोका। कल शाम 4 बजे आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम जीत मंजरी के तहत सुनिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म से सनम पुरी और नीति मोहन, नोटबुक फिल्म से कमाल खान, सत्यमेव जयते फिल्म से आतिफ असलम और तुलसी कुमार, मित्रों फिल्म से जुबिन नौटियाल, भूत फिल्म से अखिल सचदेव और मशील गुजराल, बधाई दो फिल्म से अरिजीत सिंह और रूपाली मोघे, केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी, हमटी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल तथा फने खान फिल्म से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार के आवाजों में चंद नगमे। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग के तहत आनंद लीजिए पंडित विश्व मोहन भट्ट से गिटार वादन का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 4:45 पर, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे दैनिक मनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम के तहत सुनिए CBCS तवंग मठ के सेवानिवृत्त शिक्षक गीशी थुपतिन गेंदो से मनपा भाषा में तुर्जी छुपा का 4th भाग। दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री कुंचो संगे की से कल शाम 5:30 पर, 5:35 पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम रिक्षुंग लेरिम के तहत सुनिए केशी थुपतन गेंदुन से परम पावन 6 दलाई लामा यलवा सेंग ग्यासो का संक्षिप्त जीवन परिचय। लेरिम सिरा कल शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए ग्यावंग अनी गुंपा की उमजे अनी थुतिन छोजंग से कुंचो जेदरन और मुंगनेक छोगा। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 बजे, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कव्वाली के तहत आनंद लीजिए दिल्ली सिक्स और फिजा फिल्मों से 2 कव्वालियों का कल शाम 7:10 पर, 7:25 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ के तहत सुनिए सतीश भाटिया और नलिनी जी से संस्कृत भाषा में सरस्वती वंदना का पाठ। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से AR रहमान द्वारा संगीत में पिरोए गए एक देशभक्ति गीत का। आपकी वसे फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन कल रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरूर का यही समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंदी पलों में सुनिए मनपा कार्यक्रम शेदुंग लेरिम। कृपया हमारे साथ बने रहे।
1: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स OTT ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।

उच आकाशवाणी तवांगिमपुर लांगे छामुनुप तिथु जे ग्रोखनि कर्मखेलियोनी लांगेना दा देशिक सेदन लेरिम चित कोसुदुर लांगेना देशु लेरिमा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल युथेम्बु जंग हेडमास्टर कुशब चंबा छोयगेल निंग जंग थिंगबु एजुकेशन ब्लॉक कक पोयिक किरगन लांगे ग्रो सी तुनु क्युंचक सुंपा तुकर सिंगदोंगमा शेरप निंगपो निंगवा मोनलम सन्नासा

Ponya

Je

바담기담기고제라소거당제바남기템바 사제당장저셈바남기템바

제가

साथ में विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम हो सकता है।

0: इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की कल विशाखापट्टनम में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। ये अपील पीओजेके में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी है और संचार बंद है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ली यू शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्पेशलिस्ट डॉक्टर लहम दोरजी से कान, नाक और गले की बीमारियां और उपचार विषय पर चर्चा करेंगे।
1: जी धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, कान, नाक और गले की समस्याओं को लेकर एक एक कर आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। कान की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और ज्यादातर लोग कौन सी समस्या को लेकर आपके पास आते हैं?
1: तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट्स आते हैं तो मोस्ट कॉमनली आते हैं कान से गंदा निकलना या फिर पीप निकलना, फिर दूसरा होता है कान सुनाई नहीं देना, कान दर्द होना। तो ये सब तीन मेन सबसे ज्यादा पेशेंट्स लोग आते हैं। तो कान से जो पीप या फिर गंदा निकलना वो इसलिए होता है कि कान के अंदर जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है, मेडिकल टर्म्स में कहते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, उससे पहले जो बीमार होते जो सर्दी कहते हैं, तो सर्दी होते वक्त AOM कहते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसमें नाक बंद रहता है, फिर नाक और कान का कनेक्शन जो है स्टेशन ट्यूब जो बोलते हैं वो कनेक्शन टूट जाता है, तो उसकी वजह से कान के अंदर जो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है वो कलेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो करके वो पर्दा फट जाता है, तो पर्दा फटने के कारण वहां से कान से पीप निकलता है, तो उसके कारण ही कान सुनाई भी कम देता है। तो दूसरा लोग आते हैं कि कान सुनाई कम देना, तो कान सुनाई कम देना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, फिर दूसरा फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है जवान लोगों में होता है और बच्चों में होता है। तो कारण क्या है, जो कान हम लोग देखते हैं जो बाहर देखते हैं उसको पिन्ना कहते हैं, तो पिन्ना से अंदर जाकर के फिर सबसे पहले हमें पर्दा मिलता है। हमारे शरीर के सबसे छोटे छोटे तीन हड्डियां होते हैं जो मैलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं, तो वो तीन हड्डी होते हैं, ये तीनों हड्डियां जो है बाहर का साउंड को ट्रांसमिशन करके हमारे नर्व से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम ये पर्दा में या कान के हड्डी में होगा तो उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। पर्दे में कुछ प्रॉब्लम है तो पर्दे का ऑपरेशन जो मेरिंगोप्लास्टी कहते हैं, या फिर हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बाहर से पता नहीं चलता, वो सीटी स्कैन करना पड़ता है उसके लिए, तो सीटी स्कैन में अगर दिख जाए तो उसको फिर हम लोग ऑपरेशन करने लगे, ओस्टियोप्लास्टी कहते हैं। तो ये सब ऑपरेशन करके जो जवान और बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो सकता है। फिर अलग जो है प्रॉब्लम वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, वो जो बुजुर्ग में होते हैं, तो बुजुर्ग में जब होते हैं तो वो यूजुअली ये कान का पर्दा या फिर हड्डियों में कुछ नहीं होता, तो उसके अंदर जो नर्व कहते हैं, जो नर्व वो जो ब्रेन तक पहुंचा तो उसमें प्रॉब्लम होता है, तो उसमें कुछ ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, हियरिंग एड यूज करते हैं उसके लिए। तो हियरिंग एड क्या करते हैं कि वो छोटा छोटा साउंड को भी वो एम्पलीफाई करके बड़ा साउंड बनाते हैं, उसी से वो बड़ा साउंड ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो फिर उसके बाद हुआ कान दर्द होना, तो कान दर्द जो क्यों होता है, अगर बॉयल यूजुअली हमारे शरीर में होता है तो हमारा चमड़ा जो है वो एक्चुअली स्ट्रेच कर सकते हैं, तो उसकी वजह से दर्द ज्यादा नहीं होता। तो कान में अगर जब ये बॉयल होता है तो कान में जो हमारे चमड़ा है वो चमड़ा ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाता, तो इसीलिए अगर छोटा सा भी बॉयल होगा तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो उसके कारण पेशेंट लोग आते हैं, उसको डायग्नोसिस कहते हैं हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसमें हमें पेन किलर भी यूज करना पड़ता है और एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ता है। तो कान में मोस्टली ये तीन ही है, इसको छोड़कर फिर पेशेंट्स आते हैं जैसे कान बजना, कान में कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, उसको इंग्लिश में हम लोग टिनिटस कहते हैं, जो कि ट्रीट करना थोड़ा तकलीफ होता है हर पेशेंट में। तो इसमें जरूरी नहीं कि कान में कुछ प्रॉब्लम होगा ही, तो उसमें सिर्फ कान में ही नहीं, अगर सिस्टमिक बोलेंगे तो पूरा शरीर में अगर कोई भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी ऑर्गन में, तो उसमें यूजुअली वास्कुलर कहते हैं, जो वास्कुलर हमारे जो खून जो पास होता है अपने शरीर में, आर्टरी वेन कहते हैं उसे, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर उससे भी कुछ, कान के अंदर जो है उसको जुगुलर बल्ब कहते हैं, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर उससे भी टिनिटस हो सकता है, तो उसमें ट्रीट करने के लिए तो फिर थोड़ा तकलीफ होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है अगर इफ इट इज वास्कुलर। तो अगर वो सब नहीं होगा, कभी कभी कान का पर्दा फटने की वजह से जब बाहर से हवा आता है तो उसमें भी ये कान बजना हो सकता है, तो उसके लिए कान का पर्दा का ऑपरेशन कर देंगे तो ठीक हो सकता है।
0: जी, जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि ज्यादातर लोगों का कान का जो पर्दा है वो फटने से समस्या ज्यादा होती है, तो ये जो कान के पर्दा अगर एक बार फट जाते हैं तो उसका कोई उपचार है, इसका इलाज हो सकता है?
1: जी, ठीक किया जा सकता है पर्दा को, उसको मेरिंगोप्लास्टी कहते हैं। तो फिर मेरिंगोप्लास्टी भी अलग अलग तरह का होता है, एक माइक्रोस्कोपिक होता है और दूसरा होता है एंडोस्कोपिक, जिसमें कैमरे से हम लोग देख करके अंदर ही ऑपरेशन करते हैं, बाहर पे कुछ काट वाट कुछ नहीं करते हैं। जस कान का एक नकली पर्दा जो लगाते हैं उसके लिए छोटा सा काटा जाता है, वो कान के जस्ट पीछे में आपके हेड की तरफ काटा जाएगा, फिर वहां से नकली पर्दा जैसे छोटा सा निकालेंगे उतना ही कटेगा, फिर बाकी सब कुछ होगा इंस्ट्रूमेंट से, जो एंडोस्कोप से लेकर के कैमरा से लेकर के पूरा कान के अंदर ही होगा, बाहर कुछ नहीं कटेगा, और ये ठीक किया जा सकता है कान का पर्दा जो है। तवांग में भी ऑपरेशन होता है, मैंने अभी तक कान का पर्दा ऑपरेशन लगभग 25 जैसे किया है यहाँ पे तवांग में, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2-3 लोगों का सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस मतलब ये नहीं है कि पूरा एकदम जैसे ऑपरेशन के कुछ भी सही नहीं हुआ, सक्सेस मतलब पेशेंट की तरफ से सक्सेस नहीं हुआ, जैसे बोल रहे हैं वो लोग जितना वो

0: सोच रहे थे कि जितना सोने देना चाहिए ऑपरेशन के उतना सोने नहीं दे रहा, तो वो एक्चुअली सक्सेस नहीं हुआ नहीं है। मैं सिर्फ ऑपरेशन करके डॉक्टर का ही सिर्फ काम नहीं रहता, उसमें पेशेंट अपने आप को भी वो केयर करना पड़ता है, जैसे कि ऑपरेशन के बाद पानी नहीं जाने देना है कान के अंदर, फिर हाथ से नहीं खुजाना है, फिर कुछ सामान डाल करके नहीं खुजाना, ये सब अगर ठीक से वो लोग केयर करेंगे तो सक्सेस रहेगा।
1: जी, जो बुजुर्ग है उसमें सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो आप
0: हियरिंग एड
1: लगाते हैं जी, तो वो हियरिंग एड जो है वो कितने समय तक वो टिकाव रहते हैं, उसको समय समय पर बदलना पड़ता है या फिर वो एक बार लगाने के बाद बहुत समय तक चलता है?
0: हियरिंग एड भी एक्चुअली तरह तरह का होता है, जैसे हमारा नजर थोड़ा कमजोर हो जाता है तो जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं तो वो चश्मा भी हर किसी का सेम नहीं रहता, तो उसमें भी अलग अलग पावर रहता है। उसी तरह हमारे कान का भी सुनने की क्षमता जो है उसको चेक किया जाता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं, जिसको ऐसे बंद कमरे में चेक किया जाता है कान कितना सुनाई दे रहा है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में चेक किया जाता है, उसके ही मुताबिक हमारे हियरिंग एड को भी डिजाइन किया जाता है। फिलहाल हमारे तवांग में है नहीं हियरिंग एड वाला कोई दुकान, तो मैं यूजली वहाँ पे गुवाहाटी में कॉन्टेक्ट करके जब मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ उसको रिजल्ट को मैं गुवाहाटी भेजता हूँ, तो भेज करके फिर अगर पेशेंट खुद चाहते हैं तो उसमें अलग अलग रेट का रहता है, फिर हियरिंग एड भी ज्यादा रेट का जो है वो अच्छा रहता है, फिर कम रेट का कम होता है, तो वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली मैं मंगा देता हूँ। और इसका कब तक चलता है, तो ये बैटरी सिस्टम है हमारे फोन की तरह ही है, जैसे हम लोग अगर ज्यादा यूज करेंगे तो फोन भी ज्यादा डिस्चार्ज होगा, वैसा ही अगर दिन भर में आपने यूज किया फिर रात में सोते समय खोल के रख दिया तो वो ज्यादा चलेगा, वो बैटरी के ऊपर है।
1: और शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है कान, ज्यादातर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। अक्सर हम देखते हैं बड़े या भाई बहनों में जब लड़ाई हो जाते हैं या फिर दोस्तों में लड़ाई हो जाते हैं तो वो थप्पड़ लगा देते हैं, तो उससे कान को भी नुकसान पहुंचते हैं, उससे चोट उनको लगते हैं कान के अंदर, तो इससे क्या खतरनाक हो सकते हैं? कभी कभी डॉक्टर के पास जाने की भी नौबत आ जाती है।
0: जी, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉमेटिक परफोरेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि कहीं आप किसी से झगड़ा करके किसी ने थप्पड़ मारा, या फिर आप खेलते समय बॉल से लग गया या फिर हाथ से कहीं लग गया, तो उसमें ट्रॉमेटिक परफोरेशन कहते हैं। तो हमारे बॉडी का एक्चुअली बहुत ज्यादा वो क्षमता होता है कि खुद खुद से हील करें, तो जब भी हमें कुछ छोटा मोटा बीमार होते हैं तो बॉडी सबसे पहले यही ट्राई करता है कि वो खुद खुद से हील करें। तो ट्रॉमेटिक परफोरेशन में बहुत टाइम ऐसे होता है कि खुद खुद से हील हो जाता है, आपको ना ऑपरेशन की जरूरत होता है ना कोई मेडिकेशन का जरूरत होता है, ये खुद खुद से हील हो जाता है।
1: जी, ऐसा भी अक्सर हम देखते हैं कि कान को हम साफ करने के बावजूद उसमें कुछ वैक्स रह जाते हैं, बाद में वो काला होकर बहुत बड़ा बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
0: जी, जैसे मैंने बताया हमारे जो स्किन है, चमड़ा है, जो चमड़ा आज देख रहे हो ये 5-10 साल पहले ये चमड़ा ये नहीं था, तो इसमें जो बोलते हैं चमड़ा चेंज होता है, जैसे सांपों में होता है चमड़ा चेंज होता है उनका, तो वैसे ही चमड़ा हमारा भी चेंज होता है जो हमें दिखता नहीं है, तो वैसे ही कान के अंदर भी पर्दा है, पर्दा तक वहाँ पे चमड़ा है, तो वो चमड़ा भी टाइम में चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे चेंज होते समय वो वैक्स के तौर पे निकलता है। तो हम लोग जैसे अभी नॉर्मली अभी भी आप अगर कान के अंदर उंगली डाल करके देखेंगे तो थोड़ा बहुत गंदा तो निकलेगा ही, वो बिल्कुल नॉर्मल है। एबनॉर्मल कब होता है? जब ये वैक्स खुद खुद से बाहर नहीं निकलता, जब ज्यादा जम जाता है तो उसके बाद ये कलर भी इसका चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, उसको हम लोग इम्पैक्टेड वैक्स कहते हैं। अगर फिर ईयर केनाल सब बंद हो गया तो उसमें कान सुनाई भी कम देगा, तो उसके लिए कुछ सर्जरी तो करना नहीं पड़ता, जस्ट हमें वैक्स सील करके ईयर ड्रॉप रहता है जिसमें ऐसा दवाई होता है जिससे ये जो हार्ड हो जाता है वैक्स जो वो उसको नरम कर देता है, तो नरम करने के बाद उसको इजीली हमारे ओपीडी में अगर आते हैं तो उसमें सिरिंज से पानी डाल करके उसको वैक्स को आराम से निकाला जा सकता है, उसके लिए कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं होता।
1: जी, और जैसा कि आजकल हम देखते हैं जो नौजवान है ईयरफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी नुकसान हो सकते हैं कानों को?
0: जी, जैसे जैसे मॉडर्न टाइम होते जाता है वैसे हम लोगों को ह्यूमंस को भी चेंज होना पड़ता है, तो यूज करना हानिकारक तो नहीं है, बट देन सुबह शाम हर वक्त लगा के रखना और लाउड साउंड सुनना ये हानिकारक हो सकता है, तो इसको केयर करना चाहिए। अगर यूज करते भी है तो ज्यादा यूज ना करें, अगर यूज करते भी है तो उसमें बहुत ज्यादा लाउड साउंड यूज ना करें, थोड़ा नॉर्मल साउंड यूज करें, जितना हो सके कम यूज करें, क्योंकि इसको बिना यूज किए तो हम लोग नहीं रह सकते।
1: जी बिल्कुल, और बहरापन जो है वो बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। एक तो है कि सामान्य उम्र के बाद बहरापन आता ही है, लेकिन कोई कोई जन्मजात से ही बहरा होता है, तो इसका जो जांच है वो आप किस तरह से करते हैं, वो बहरा है कि नहीं?
0: जैसे बच्चे डिलीवरी होने के साथ साथ अगर जांच करना होगा तो यूजुअली हम लोग लाउड साउंड्स यूज करते हैं, ये इनफॉर्मल हो गया, तो इनफॉर्मली हम लोग ऐसे यूज करते हैं जो कुछ ताली बजाकर या फिर बच्चे के कान के सामने कुछ साउंड करना, तो उससे बच्चे रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो देखते हैं, तो उसमें अगर रिएक्ट करते हैं बच्चों कान सही है हम मानते हैं, फिर अदरवाइज अगर मशीन से यूज करते हैं तो हमारे ऑटो एकोस्टिक इमिशंस करके एक मशीन रहता है, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल

0: में है, बट हमारे पास ये ऑडियोमेट्री का ये रूम नहीं है, इसीलिए नहीं करते हैं अभी. फिर दूसरा होता है बेरा, ब्रेन स्टेम एवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री करके होता है, तो वो हमारे पास नहीं है. तो उसके लिए फिर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर ऑडियोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, बट देन बराबरा सेंटर्स में ही, हमारे यहाँ पे नहीं है. और उससे ज्यादा अगर जस्ट डिलीवरी के बाद ही नहीं, कभी कभी पेशेंट पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को 3, 4, 5 साल के बाद, बोलते हैं कि ये बच्चों को शायद सुनाई नहीं दे रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कंजेनिटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसके लिए एक्चुअली वो लोग इसलिए लेके आते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि बच्चों, जिसे हम लोग कॉमन टर्म में बोलते हैं बुद्धू हो गया, तो बुद्धू एक्चुअली बुद्धू वो नहीं है. बुद्धू क्यों है कि जैसे हम लोग बचपन में कैसे सीखते हैं, हम लोग कुछ सुन के सीखते हैं, जैसे हम लोग लैंग्वेज सीखना, जैसे मैंने मनपा सीखा, मैंने माँ पिताजी को मनपा करते हुए सुना इसलिए मैंने मनपा सीखा, फिर मैं तमिलनाडु में गया, मैंने लोगों को तमिल बात करते हुए सुना इसलिए सीखा. तो बचपन में अगर जिसको सुनाई नहीं देता है तो वो कुछ सुनते नहीं है, तो कुछ सीखते नहीं है, तो उसकी वजह से उनको बुद्धू कहलाता है. बोलने में भी बोल भी नहीं सकते हैं. तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का स्कीम रहता है, अगर 5 साल के अंदर तक अगर बच्चों को कंजेनिटल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अगर डायग्नोस्ड है, तो उसमें कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं. तो वो तो हमारे अरुणाचल में होता नहीं है. अगर कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, उसका इम्प्लांट का ही 10 लाख रहता है. बट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो अभी नहीं आया हमारे अरुणाचल के, लेकिन अदीप स्कीम करके एक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उसके अंदर ऑपरेशन फ्री में होता है.
1: जी डॉक्टर साहब, आपने कानों की समस्या और इसके इलाज के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है. और आप, मैं नाक के ऊपर आना चाहूंगी, तो नाक के भी बहुत सारे समस्या होते हैं, जैसे कि मौसम बदलने के साथ बहुत से लोगों को एलर्जी भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका असर आवाज पर भी पड़ती है. तो ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इसका इलाज कैसे हो सकता है?
0: जी, नाक का समस्या जो जो पेशेंट्स लेकर के आते हैं, उसमें पहला है नाक बंद रहना, और दूसरा पेशेंट्स आते हैं नाक से पानी निकलना या फिर छींक आना, जिसको हम लोग एलर्जी कहते हैं. दूसरा और तीसरा है साइनसाइटिस, जो कॉमन टर्म में हम लोग साइनस कहते हैं. फिर बच्चों में यूजुअली होता है ये नाक से खून निकलना, जिसको हम लोग एपिस्टेक्सिस कहते हैं. तो नाक बंद होना वो तरह तरह के कारण हो सकते हैं उसमें, जैसे हम लोगों के दो नाक के बीच में एक हड्डी रहता है, तो नाक की हड्डी कहते हैं. तो अगर वो टेढ़ा होता है तो वो सीधा नहीं होने से भी नाक बंद हो सकता है. तो उसके साथ साथ में नीचे इन्फीरियर टर्मिनेट कहते हैं, हमारे नाक के अंदर है, जो लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि मेरे नाक में कुछ बड़ा सा मीट निकल गया है, तो वो एक्चुअली इन्फीरियर टर्मिनेट कहते हैं उसको. वो अगर बड़ा हो जाता है तो नाक बंद हो जाता है. और दूसरा हो गया एलर्जी. एलर्जी जो है सीजनल होते हैं, तो यूजुअली अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे में होता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स फ्लाई होता है. तो उसमें पेशेंट्स लोग बोलते हैं कि साल साल में यही समय में मुझे बार बार ये सब सिम्टम्स आता है, जिसमें एलर्जी में क्या क्या होता है, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी निकलना, फिर नाक और आंख खुजली होना, ये सब एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम्स है, जिसका एक्चुअली एलर्जी को क्योर नहीं किया जा सकता, बट कंट्रोल किया जा सकता है. तो उसमें जब आपको ये सब सिम्टम्स हो जाए तो मेरे पास अगर हॉस्पिटल में आएंगे तो मैं ट्रीटमेंट अगर लिख दूंगा, तो आप ये यूज करेंगे तो 1 साल जैसा तक फ्री रहेंगे सिम्टम्स से. अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर साल भर आपको ये सब से जूझना पड़ेगा. फिर थर्ड हो गया साइनसाइटिस, कॉमन टर्म में हम लोग साइनस कहते हैं, जो एक्चुअली ये साइनसाइटिस जो है क्यों होता है, हमारे ये सर की हड्डी जो है, चेहरा और सर पूरा मिलाकर के जो हड्डी है, ये पूरी तरह हड्डी नहीं है, तो इसके अंदर एक होलो स्पेस रहता है, जो बिना हड्डी का जगह रहता है, जिसमें हवा भरा रहता है, तो उसको साइनस कहते हैं. तो अगर ये साइनस अगर कुछ प्रॉब्लम है, नाक बंद रहना, सर्दी होना, इसकी वजह से अगर ये साइनस ब्लॉक हो गया, फिर साइनस के अंदर पानी कलेक्शन हो गया, फिर सबसे पहले पेशेंट को ये सर भारी लगने लगता है, तो सर भारी होता है, फिर सर दर्द होता है, तो ये सब साइनसाइटिस में होता है. तो इसके लिए पहले तो मेडिसिन दिया जाता है, तो अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो फिर सर्जरी के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं. फिर लास्ट है जो बच्चों में होता है मोस्टली एपिस्टेक्सिस कहते हैं, जो नाक से खून निकलना. तो बच्चों में तो बहुत कॉमन रीजन तो यही है कि बच्चे बार बार हाथ डाल करके नाक साफ करने के लिए करते हैं, उसमें जो इंजरी कर देते हैं उसकी वजह से ही होता है. और उसको छोड़ करके फिर टोन्सिल जैसा ही हमारे नाक के पीछे एक एडिनोइड बोल करके होता है, तो अगर एडिनोइड बड़ा हो जाता है तो नाक बंद होता है, फिर वहां से खून भी निकलता है. और दूसरा नाक में स्प्रे यूज करने के लिए होते हैं, वो स्टीरॉइड का स्प्रे होता है. और तीसरा जो है गर्म में जो हम लोग कर सकते हैं वो स्टीम इनहेलेशन, जो गर्म पानी का भाप जो निकलते हैं उसको सूंघना है हमें सुबह शाम को. अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा राहत मिलेगा.
1: जी, घरेलू नुस्खा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
0: जी जी.
1: इसके बाद मैं गले पर आना चाहूंगी, तो गले को लेकर कौन कौन सी समस्या होती है? जैसे हम अक्सर देखते हैं गला बैठ जाता है, आवाज बैठ जाती है, गले में खराश हो जाती है, तो इसकी क्या वजह है और इसके लिए एहतियात क्या क्या चाहिए कि हमारी गला ना बैठे?
0: जी जी. तो

0: दिल्ली में जो जो समस्या रहता है वो बाहर से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जीभ के पीछे हमारा टोन्सिल रहता है, तो टोन्सिल अगर टोन्सिल में कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो टोन्सिलाइटिस कहते हैं, जो उस वो तरह तरह का होता है। फिर फोलिकुलर टोन्सिलाइटिस, मेम्ब्रेनस टोन्सिलाइटिस। अगर टोन्सिल ज्यादा होगा तो फिर लोगों को निकलने में दर्द होगा, बुखार भी होगा, फिर उसके बाद कभी कभी पूरा शरीर भी दर्द होने लगता है, फिर सर दर्द भी होने लगता है। तो टोन्सिल में ये सब हो सकता है। फिर टोन्सिल के जस्ट पीछे अगर जाएंगे तो हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, जो फेरिंजाइटिस, तो उसमें टोन्सिल तो बड़ा नहीं होता लेकिन सिम्टम सब टोन्सिल जैसा ही होता है। फिर अगर उससे नीचे जाएंगे तो हम लोग लेरिंजाइटिस कहते हैं, लेरिंग्स अगर कुछ इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो लेरिंग्स में अगर हो गया तो लेरिंजाइटिस। उसमें आपको गला दर्द कम रहेगा बट आपका आवाज बैठ जाएगा, तो उसमें लैरिंग्स के अंदर ही हमारा वोकल कॉर्ड जो होता है, जो आवाज का ये बॉक्स जो कहते हैं, तो उसमें अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया तो आपका आवाज बैठ जाएगा। तो उसको देखने के लिए आपको ओपीडी में डायरेक्ट टॉर्च लाइट से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए एंडोस्कोप से देखा जाता है। तो वो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जिससे हम लोग देखते हैं और आपको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट उसके लिए भी दिया जाता है।
1: और डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर अक्सर देखते हैं जब लोगों की नाक बंद हो जाता है, गला बैठ जाता है या फिर

0: शिकायत रहती है तो वो फार्मेसी से जाकर दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर के सलाह और प्रेस्क्रिप्शन की, तो ये कहाँ तक सही है? और जब फार्मेसी से दवाई लेकर जब वो ठीक नहीं होते हैं तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, तो ऐसा करना कहाँ तक सुरक्षित है?
1: जी जी, अगर सही में बोले तो अभी कुछ भी अगर छोटे से छोटे समस्या भी आपका हो तो डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ना कि आप डायरेक्ट सीधा जाके फार्मेसी से दवाई ले लिए, सीधा जाकर के खा लिए, उसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैंने कुछ फार्मेसी से दवाई खाया था बट ठीक नहीं हुआ, तो जब मैं पूछता हूँ तो कौन सा दवाई खाया था, उनको पता नहीं रहता कि कौन सा दवाई खाया। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर डॉक्टर्स के पास, मान लीजिए आपने कोई टेबलेट खाया फिर वो उससे ठीक नहीं हुआ, फिर आप डॉक्टर्स के पास आए, फिर डॉक्टर ने पूछा आपको कौन सा दवाई खाया, आपको पता नहीं, फिर आप डॉक्टर ने वही दवाई लिख दिया, तो आपको ठीक होने का चांस थोड़ा कम रहता है। तो इसीलिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप पहले डॉक्टर को दिखाएं फिर उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें।
0: और अपने कान नाक और गले के लिए उपचार के लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध है, इसके बारे में भी जानना चाहूंगी।
1: जी, उसके लिए तो मैं पहले जो डीसी था हमारा संघुनसो सर और हमारा पहले जो डीएमओ सर थे वांगडी सर, उन दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था दोनों सर ने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए एक्चुअली, तो उस मीटिंग में मुझे बोला गया था कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जो चाहिए सामान उसका लिस्ट बना करके हमें दे दें। और जब मैंने लिस्ट बना करके दिया तो दोनों सर ने इतना अच्छे से पूरा इक्विपमेंट सब इंस्ट्रूमेंट्स को विद इन 6 मंथ्स के अंदर सब लेकर के मुझे यहाँ पे प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से मैं अभी बहुत सारा ऑपरेशन कर सक रहा हूँ यहाँ पे, जबकि तवांग बहुत दूर है हमारे मेनलैंड से। अगर यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग पेशेंट यहाँ से सबसे नजदीक तो तेजपुर जाना पड़ता है जो 330 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सर दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे कान में बोलेंगे तो यहाँ पे यूजुअली कान का ऑपरेशन होता है माइक्रोस्कोप से और एंडोस्कोप से, तो दोनों ही हमारे पास है यहाँ पे, अच्छा कंपनी का माइक्रोस्कोप है। एंडोस्कोप भी कार्ल स्टोस जो बहुत कॉस्टली रहता है 40 लाख का रहता है, वो एंडोस्कोप भी है हमारे पास, जो कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अरुणाचल में कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है बट यहाँ पे है। तो कान का ऑपरेशन जो होता है वो आजकल कुछ काटना वाटना कुछ नहीं होता है, जस्ट एंडोस्कोप से देखा माइक्रोस्कोप से देखा सब कुछ अंदर ही होता है, तो इसीलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑपरेशन कराना होगा तो यहाँ पे सब कुछ हमारे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए भी ऑडियोमेट्री है, सीटी स्कैन है, सब कुछ है, तो यहाँ पे करके हम लोग ऑपरेशन यही करते हैं। फिर नाक का भी हम लोग यूजुअली पहले जो होते थे ओपन साइनस सर्जरी बोलते हैं, नाक का काट के खोलना वो सब होता था, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम्स में ये सब नहीं होता, ये सब फिर एंडोस्कोप से ऑपरेशन होता है। जो एंडोस्कोप हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है यही यूज होता है, तो सब कुछ ऑपरेशन यहाँ पे हो जाता है। जैसे नाक से मीट निकलना जो बोलते हैं लोग, पॉलिप कहते हैं यूजुअली, वो एबनॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं नाक के अंदर, वो सबका भी ऑपरेशन हमारे यहाँ होता है। फिर गले का बोलेंगे तो हमारे टोन्सिल जो बच्चों में होता है, एडल्ट में भी होता है, बड़ों में भी होता है बट बच्चों में ज्यादा होता है, तो टोन्सिल का भी ऑपरेशन करने का सब सामान है हमारे पास। टोन्सिल का ही नहीं, गले का अलग ऑपरेशन भी, जैसे कहीं एक्सीडेंटली गले में कुछ कट आ गया या फिर गाय का बुलगोर से लग गया ऐसे कुछ होगा तो उसके भी ऑपरेशन होते हैं, ट्रकेस्टमी जो बोलते हैं, उसका भी हमारे पास सब सामान है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपसे और भी बहुत सारी जानकारियां लेनी थी लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो जो समय आज आप निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को कान नाक और गले से संबंधित क्या क्या समस्या होती है और इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं, इसके बारे में आपने जो जानकारी दी है इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना खंडरू ड्रोवा जंगमो जिला अस्पताल तावांग के ईएनटी जूनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लम दोर्जी से कान नाक और गले से संबंधित रोग एवं उनका उपचार विषय पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:31 हुए हैं। लीजिए अब पेश है सुरो और दोनों का साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आनंद लेंगे अलबेला और कल हो ना हो फिल्मों के 2 गीतों के साज और आवाज का। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं अलबेला फिल्म से इस साज के साथ, जिसे सजाया है जतिन और ललित ने।

श्रोताओं तो चलिए इस साज का आनंद लेते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के आवाजों के साथ। इस गीत को शब्द दिया है समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम सास और आवाज का दूसरा सास प्रस्तुत है कल हो न हो फिल्म से, जिसे सवारा है शंकर एहसान लोई ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया अलबेला और कल हो ना हो फिल्मों से दो गीतों के साज और आवाज का। इसी के साथ ही सुर और धुनों का साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज अब खत्म होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब से जंधी बलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहे।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूल शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में प्रत्येक पुरस्कार विजेता द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को दर्शाने वाली लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ उत्कृष्ट शिक्षकों के विशिष्ट योगदान को उत्सव मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह पहल के तहत आयोजित 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। इन मामलों में वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद तथा शीर्ष अदालत से लंबित सेवा और श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। विशेष लोक अदालत कल तक जारी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने आयोग के सदस्यों के साथ आज ईटानगर स्थित लोकभवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को 31 जुलाई और 1 अगस्त 2026 को तवांग में आयोजित 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट एससी पीसीआर सम्मेलन ऑन चाइल्ड राइट्स के परिणामों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया है कि इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की बाल अधिकार संस्थाओं ने भाग लिया। राज्यपाल ने बढ़ते पॉक्सो मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और मामलों में अभियोजन के बेहद कम दर पर खेद जताया। उन्होंने प्रत्येक बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा है कि समय समय पर समीक्षा और स्वतंत्र आंकलन से जवाबदेही मजबूत होती है तथा व्यवस्था में मौजूद कमियों को भी दूर करने में मदद मिलती है। इस बीच जीरो फेस्टिवल के सह संस्थापक श्री बॉबी हानो ने श्री अनूप कुट्टी ने भी आज राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया है कि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल भारत के सबसे लोकप्रिय स्वतंत्र संगीत और सांस्कृतिक उत्सव

0: उत्सवों में से एक है। दोनों सह संस्थापकों ने बताया है कि वे इस उत्सव को देश के अन्य हिस्सों में भी ले जाने की उम्मीद रखते हैं, जिनमें हैदराबाद, पौंडीचेरी और चंडीगढ़ शामिल है। इसके लिए परियोजन और संबंधित स्थानों पर स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस मामले में राज्यपाल ने टीम को ये प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष रखने की सलाह दी, ताकि संबंधित राज्यों के साथ समन्वय किया जा सके और राज्य में माध्यम से परियोजना के जरिए धन भी जुटाया जा सके। उन्होंने इस पहल के लिए अपने स्तर पर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने आयोजकों को युवा सशक्तिकरण और ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए फेस्टिवल को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्थानीय युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रबंध, आतिथ्य, कंटेंट निर्माण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पर्यटन सेवाओं के क्षेत्र में अधिक अवसर पैदा करने का सुझाव भी दिया। ईस्ट कमिंग कृषि विज्ञान केंद्र केवीके द्वारा पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह के अवसर पर अपने कैंपस में पार्थेनियम के बारे में जागरूकता को और बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय किसान परिवारों और ग्रामीण युवाओं को पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे आमतौर पर गाजर घास भी कहा जाता है, इसे तेजी से फैलने वाली जहरीली खरपतवार के बारे में जागरूक करना था। ये खरपतवार पूरे जिले में खेती की जमीनों और सड़कों के किनारे भी फैल रही है। केवीके के प्रमुख डॉक्टर एम सी देवनाथ ने खरपतवार से होने वाले गंभीर खतरों के बारे में जानकारी प्रदान की। एनजीओ आयकर अकुम द्वारा ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्टेट आईजीजे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ऑडिटोरियम में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके योगदान को सराहकर उन्हें सम्मानित करना था। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कादो पोनुंग नामक एक सांस्कृतिक गीत पेश किया गया। 38 ईस्ट पासीघाट विधायक तापी दारांग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आयकर कुम और उसके सदस्यों की पहल की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वे अकेलेपन का सामना करना बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। विधायक ने कहा है कि ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि वरिष्ठ नागरिक अपनी जिंदगी खुशी, सम्मान और सादगी में बिताए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Shabshachi Bhattacharya with regional news. The government imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children below 4 years of age. The decision has been taken following the recommendations of an expert committee and the Drug Technical Advisory Board. The Supreme Court has settled more than 400 cases on the first day of a three-day special Lok Adalat being held as part of the Samadhan Samaro initiative. The cases include matrimonial and property disputes, motor accident claims, land acquisition and compensation matters, tax disputes and service and labor cases pending before the top court. The special Lok Adalat, which began yesterday, will continue till tomorrow. President of India Draupadi Murmu will confer National Teachers Award to 48 school teachers at Vigyan Bhavan New Delhi on Teachers Day. Short documentaries on each awardee depicting the exemplary work done by them will be showcased at the event. A delegation of the Arunachal Pradesh State Commission for Protection of Child Rights, led by its chairperson, called on Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik at Lok Bhavan Itanagar today. The chairperson briefed the governor on the outcome of the two-day Northeast SCPCS Convention on Child Rights held at Tawang on 31st July and 1st August 2026. The governor expressed his grave concern on growing POXO cases and regretted the extremely low rate of prosecution. He also emphasized strict monitoring of the implementation of the Juvenile Justice Act, the POXO Act and the Right to Education Act to ensure that every child remains safe, educated and protected. Meanwhile, the Team Hero Festival also called on Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik and briefed him about the festival. The co-founders, Bobby Hano and Anup Kutty, expressed that they hope to take this Northeast Festival to other parts of the country. The Governor advised the team to take up the proposal with the state government. He also encouraged the organizers to use the festival as a catalyst for youth empowerment and rural economic growth. Krishi Vigyan Kendra KVK East Kaming organized a comprehensive Parthenium awareness program at its campus yesterday too.

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया उपकार फिल्म से एक देशभक्ति गीत का। इसी के साथ ही कार्यक्रम कौमेता रानी समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे है, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो चलिए आनंद लेते हैं कार्यक्रम के पहले नगमे का। कोपरगांव से सुरेश मलोडे और वर्षा मलोडे तथा शिवगांव से श्री राम गोंधाली और उषा गोंधाली के फरमाइश पर, जो कि है सागर फिल्म से किशोर कुमार के आवाज में। गीत को रचा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा आइए सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण के आवाजों में, जिसकी फरमाइशें आए हैं मेहर नगर उमरखेद महाराष्ट्र के अभिजीत गवंकर राही, मिसेस सरिता गवंकर और प्रिंस एकांश गवंकर, बदलापुर मुंबई के सिद्धांत गवंकर, प्रनीता गवंकर और लाडला टुकटुक गवंकर तथा आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के वैशाली शैलेश गवंकर, सुमित गवंकर और मिस ध्वनि गवंकर से। इस गीत के बोल है आनंद बख्शी के और संगीत उत्तम सिंह का।

श्रोताओं, नरगोरा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी के फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा, जो कि है काला पत्थर फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाज में। इस गीत को शब्द दिया है साहिर लुधियानवी ने और संगीत राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वजह फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, तत्पश्चात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। त्रिशा गायत्री सेमीफाइनल हारी, विश्व चैंपियनशिप में पहला कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मानसी लाथर ने रजत, तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक जीता। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, श्रीलंका के रुमेश ने जीता खिताब। कोलंबो में कल भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा और विशाखापट्टनम में कल भारत की मेजबानी में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियो शेंगशू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का शानदार सफर हार के साथ खत्म हुआ। हालांकि भारतीय जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम जीत लिया, लेकिन चीन की जोड़ी ने वापसी करते हुए अगले दो गेम हासिल कर 1 घंटे 11 मिनट में 18-21, 18-21, 21-13, 21-8 से जीत दर्ज की। चीन की जोड़ी के खिलाफ पिछले 7 मुकाबलों में त्रिशा और गायत्री को 6 बार हार मिली थी। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक शुरुआत की और 7-2 की बढ़त बना ली। लियू और तान ने लगातार 6 अंक लेकर वापसी की और ब्रेक तक 11-7 से आगे हो गई। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया और स्कोर 12-12 से बराबर कर दिया। स्कोर 18-18 होने के बाद त्रिशा ने एक शानदार शॉट लगाया और भारत 19-18 से आगे हो गया। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने लगातार 2 अंक लेकर पहला गेम 21-18 से जीत लिया। दूसरे गेम में चीन की जोड़ी ने 3-0 की बढ़त के साथ शुरुआत की। भारत ने वापसी करते हुए स्कोर 10-10 से बराबर किया और कुछ समय के लिए बढ़त भी बनाई, लेकिन इसके बाद लियू और तान ने भारतीय खिलाड़ियों की गलतियों का फायदा उठाते हुए चीन ने 17-12 और फिर 19-12 की बढ़त बना ली। चीन की जोड़ी ने दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबला निर्णायक तीसरे गेम में पहुंचा दिया। तीसरे गेम की शुरुआत में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन इसके बाद चीन की जोड़ी ने लगातार अंक जुटाए और 17-7 की बढ़त बना ली। अंत में

0: यू और तान ने क्रॉस कोर्ट शॉट के साथ मुकाबला खत्म किया और तीसरा गेम 21-8 से जीत लिया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने महिला डबल्स में आखिरी बार विश्व चैंपियनशिप का पदक 2011 में जीता था। तब ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने लंदन में कांस्य पदक हासिल किया था। चलते हैं हॉकी के कोर्ट की ओर। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से वैगनर हॉकी स्टेडियम में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक तीसरा क्वार्टर का मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों ही टीम बराबरी पर है और अभी स्कोर जो है वो 0-0 है। कोई भी टीम अब तक गोल नहीं कर सकी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए शक्ति। क्या कुछ प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में भारत का अब तक?
2: अगर प्रशांत बात की जाए अब तक के भारत के प्रदर्शन की, 1975 के बाद पदक की आस में हरमनप्रीत की आर्मी उतर चुकी है मैदान पे। क्या शानदार जीत इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में जो दर्ज की थी, उसके बुलंद हौसले शायद आज भी दिख रहे हैं। एक टफ फाइट देते हुए 4 पेनल्टी कॉर्नर अब तक नीदरलैंड्स को मिले हैं, जिसमें से भारतीय मजबूत डिफेंस के आगे टीम लगभग लाचार नजर आई है और कोई गोल नहीं कर सकी है। हालांकि भारत को उम्मीद होगी कि आने वाले 2 क्वार्टर में कुछ और अटैक किए जाएं। और अगर पहले राउंड की बात कर ली जाए तो 3 मैच में भारत ने 2 में जीत दर्ज की थी और 1 में उसको हार का सामना करना पड़ा था। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम ने वेल्स और पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन जीत दर्ज की है
1: जी। और इस मैच में जुगराज सिंह और अभिषेक और राजिंदर ने जो मुकाबला था, जिससे पहले नीदरलैंड्स में जो भारत जीती थी, जो हराया था मुकाबला, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि शक्ति, भारत का मुकाबला जो है पुरुष वर्ग की बात की जाए तो अच्छा रहा है, लेकिन कल महिला वर्ग में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। महिला हॉकी विश्व कप में कल नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 2-0 से हराया। वैगनर स्टेडियम में दूसरे राउंड के पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम पूरी तरह से हावी नजर आई और उन्होंने भारतीय टीम को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स की टीम भारत के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स को मैच के तीसरे ही मिनट में सफलता मिली। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले गोल करने के मौके को यिब्बी जानसेन ने बखूबी भुनाया और शानदार गोल दागा। नीदरलैंड्स ने इसके बाद भी भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में भी गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन दीपिका इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी। पहले हाफ के अंत तक नीदरलैंड्स की टीम 1-0 की बढ़त बनाए रखने में सफल रही। हालांकि भारतीय टीम के डिफेंस ने इस दौरान नीदरलैंड्स को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। मैच के 30वें मिनट में सविता ने शानदार बचाव भी किया। तीसरे क्वार्टर के 2 मिनट के खेल के बाद ही नीदरलैंड्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय डिफेंस बचाव करने में सफल रहा। मैच के 38वें मिनट में नीदरलैंड्स ने अपनी बढ़त को 2 कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर पर मिले मौके को फ्रेडरिके माटला भुनाने में सफल रही और उन्होंने शानदार गोल दागा। 2-0 की बढ़त हासिल करने के बावजूद नीदरलैंड्स ने लगातार अटैक जारी रखा और भारतीय टीम को मैच में वापसी करने का मौका नहीं दिया। चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन वो नीदरलैंड्स के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे। इस हार के साथ ही भारतीय टीम की राह मुश्किल हो गई है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात कुश्ती पर। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 3 और पदक जोड़े। चैंपियनशिप के आखिरी दिन टीम ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: मानसी लाथर ने प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। 68 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चीन की चेन लिंग सोंग से मानसी को डिफेंसिव बाउट के जरिए 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। तन्वी गुंडेश मकदुम ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा की एग्निया क्राकोव्स्का को 10-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं कोमल ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में हंगरी की एडा बालास को 5-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय महिला कुश्ती की नई सनसनी काजल ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते थे। 18 वर्षीय काजल धोचक ने 76 किलोग्राम चैंपियनशिप बाउट में हिस्सा लिया। उन्होंने चीन की झिंगरू सून के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-0 से मुकाबले को अपने नाम कर खिताब जीता। तनु शर्मा और सविता ने प्रतियोगिता के अलग अलग वर्ग में रजत पदक हासिल किया। 72 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में तनु को जापान की चिसातो योशिदा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 62 किलोग्राम भार वर्ग में सविता को जापान की सकुरा ओनिशी से 2-12 से हार झेलनी पड़ी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस बीच रजत

0: पदक विजेता तनु शर्मा के पिता ने इसे गर्व का क्षण बताया।
1: उसका सपना यही था भोपाल के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीते, उससे थोड़ा सा इसको हौसला मिला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में नागालैंड में ब्रॉन्ज मेडल आया था, चेन्नई के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मेडल आया, तब तो इसको पंख मिल गए। और घर परिवार का यही सपना था कि विदेश में खेल आए, इंटरनेशनल खेल के आए। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थी, इसमें बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है, इसलिए हमें अपनी बेटी पर गर्व है।
0: और श्रोताओं को बता दें कि इससे पहले काजल ने 2024 में 69 किलोग्राम वर्ग के अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था और 2025 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के 72 किलोग्राम कैटेगरी भी वो जीत चुकी है। काजल ने इस साल के शुरुआत में अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप और बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और अब बात डायमंड लीग की। लुसाने डायमंड लीग में भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने सीजन का अपना बेस्ट थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश थरंगा ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।

0: और अब चलते हैं क्रिकेट के कोर्ट मैदान की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और आखिरी टेस्ट क्रिकेट मुकाबला कल से कोलंबा के सेहली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। भारत ने पहले टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 165 रन से हराया था। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: भारत ने पहले टेस्ट मैच में तीनों डिपार्टमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की लाजवाब पारी खेली थी, जबकि केएल राहुल और ध्रुव जुरेल भी श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हुए थे। दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 66 रन की दमदार पारी खेली थी। हालांकि दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल से भी टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं गेंदबाजी में मानस सुधार ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट अपने नाम किया था। रविंद्र जडेजा भी गेंद से किफायती साबित हुए थे। फील्डिंग में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई रन बचाए और कैचेस भी लिए। वहीं दूसरी ओर मेजबान श्रीलंका कोलंबो में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। गोल टेस्ट की दोनों ही पारियों में श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम भारतीय स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आया था। कुशल मेंडिस और दिनेश चांदीमल के दूसरे टेस्ट से बाहर होने से टीम को दोहरा झटका लगा है। गोल टेस्ट की दोनों ही पारियों में दमदार प्रदर्शन करने वाले सोनल दिनोशा से टीम को इस मुकाबले में भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं कप्तान धनंजय डी सिल्वा को भी बल्ले से अहम योगदान देना होगा। गेंदबाजी में प्रभात जयसूर्या अच्छी लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने कुल 7 विकेट अपने नाम किए थे। वहीं तेज गेंदबाजी में असीथा फर्नांडो असरदार साबित हुए थे। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 47 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं श्रीलंका ने 7 मैच जीते हैं, जबकि 17 मुकाबलों का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: इस बीच भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने मुकाबले से पहले आज क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2: We want to work extremely hard, not only for one or two days, but extremely hard for 5 days to win a test match. And that is exactly what we did in the last test match. That is why it was very, very pleasing for us that we worked extremely hard. We did the right things right in test cricket. Our guys got in, make those big runs. We had partnerships. We batted first. We batted for 4.5 sessions, put big runs on the board. That is what the key is in these subcontinent conditions. If you bat first, you try and bat big so that you can control the test match from there. And then we had wickets from our seamers. We had wickets from our spinners as well. So I'm not going to say that it was perfect test match, but that is how we want to see test cricket going forward as well, so that teams have to work extremely hard to win a test match over a course of 5 days.
0: शक्ति, जब से कप्तानी मिली है शुभमन गिल को, लगातार भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले हमने इंग्लैंड में देखा कि सीरीज को ड्रॉ किया था, और अब पहला मुकाबला भी श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को हराना कोई आसान बात नहीं है। लगातार शुभमन गिल बल्ले से और अपनी कप्तानी से अच्छा एक इतिहास रच रहे हैं और अपना एक नाम बना रहे हैं। क्या कुछ नया मौका होगा उनके पास इस श्रृंखला में? अब और
3: जी प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर मुकाबले में एक नया रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के इस प्रिंस की नजरों में होता है। ऐसे ही कई रिकॉर्ड जब कल भारतीय टीम उतरेगी तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा गिल के पास कि वो 5 शतक लगा चुके हैं WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में। कल वो 6ठा शतक लगाते ही इस पूरे साइकिल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी वो इंग्लैंड के

0: कप्तान जो रूट के साथ 5-5 शतकों की बराबरी पर हैं और 26 रन जैसे ही अपने बल्ले से शुभमन गिल निकालेंगे, 9 मैचों में तकरीबन 70 की औसत के साथ ये खिलाड़ी अपने इस साइकिल में 1000 रन पूरे कर लेगा।
1: और शक्ति, इस बीच लगातार टेस्ट मैच जो है अलग अलग टीमों का भी खेला जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर, भारत और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का भी मुकाबला खेला जा रहा है, क्या कुछ रहा आज का हाल?
0: जी बिल्कुल, एक मुकाबला जहां बांग्लादेश जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ा है पहले मैच में, लेकिन आज कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क का कहर देखने को मिला बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर और बांग्लादेश की पूरी टीम 64 रन पर सिमट गई, जिसमें मिचेल स्टार्क ने 35 रन देकर शानदार 6 विकेट झटके और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 165 रन बनाते हुए 101 रन की बढ़त हासिल कर ली है। और इस बीच मिचेल स्टार्क जो है WTC साइकिल में 56 मैचों में 108 पारियों में 230 विकेट हासिल कर चुके हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति इस जानकारी के लिए। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल होंगे। इसका उद्देश्य खेल के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप इस पर अपने सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
3: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।

0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे, तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं, जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलु मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं

0: का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
1: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल

Spotlight. आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों से। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी कल शाम 4 बजे, साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम रिक्शु लेरिन कल शाम 5:35 पर, 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कव्वाली तथा आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8 बजे। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे मिडडे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री संगे बम्पा सिरथीपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री हम सिंह, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री अमल कुमार दास तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मुझे यानी हिंदी उद्घोषिका गेंदन हामू को दीजिए इजाजत। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, शुभरात्रि, जय हिंद।